0: लाहोरे दाई
1: के हो कांची
0: लाहोरे को फैशन कसुरे
1: आ तस्ता जावा
0: बाबे कस्तु गम क्यों को हो
1: लो भनु त
0: लो
1: लो मादले दाई गम काउनु होस्ता

छी कस्तो रहेछ बिना के न हो गम के को त्यस्तो सुन्दा फुरुङ भई लाहुरे ढल्केको लेकिन साले क्या है भन्दे चुरुट हेर्सल्केको केना भुल्छस लाहुरे दाई।

Απλά πάρε να ये ताऊ तेलर बरांदा मुत म भिजो जांगे तरुणी ले रुपया पैसा भीतर लगे टांगे बल्ला खाए।

काटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार का हो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बाबू सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे

करम मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।